0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: यार ये लोगों का फैसिनेशन विद किसिंग इन द स्टेयरकेस क्या है एग्जैक्टली? सो वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, शी एंड आई वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है, उसकी मम्मी पापा पड़ोसी चाचा ताई कनाडा वाले लंदन वाले सबको पता है. तो शी इज़ लाइक, लेकिन हमें छुप छुप के स्टेयरकेस में किस करने में बड़े मज़े आते हैं रोशी. एंड आई एम लाइक, क्यों, ऐसा क्या है स्टेयरकेस में? क्या पीछे ऐसे तो मसाज पार्लर टाइप फील्स आ रही होती हैं? पाँव के नीचे क्या सॉफ्ट मसाज कैंडल्स वाली फील आ रही होती है? कुछ नहीं, पीछे कॉन्क्रीट, नीचे कॉन्क्रीट. सो व्हाट्स द गुड फन इन किसिंग समवन इन अ स्टेयरकेस? एंड शी सेड, यार आसपास जब कोई आपको सडनली पकड़ ले किस करते हुए, वो वाला डर ना और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देता है चीज़ों को. सो आई हैव रियलाइज कि प्यार में एक इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ये भी होता है कि आप छुप छुप के प्यार करो, छुप छुप के किस करो. उसमें बड़ा ही मैग्नीट्यूड वाले फन आता है. अगर आप भी मेरी बेस्टी की तरह फुल ब्लोन रिलेशनशिप में हो, शादी होने वाली है आपकी टुमारो, लेकिन आज भी आप छुप छुप के स्टेयरकेस में किस कर रहे हो, देन वी नीड टू टोटली हैव कॉन्वो अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान.
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
2: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
1: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
2: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
1: स्वर्गीय अनिल चौहान मैं जिंदा हूँ भाई. मैं घर परिवार वाले में तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप.
1: नहीं
2: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हो, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आगे पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
1: केस करूंगा.
2: केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन है?
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
1: जी
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: तेरा दिमाग खराब हो गया.
2: मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
2: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: So you're totally in love with your cousin और इसीलिए आप बार बार अपनी मासी के घर जाते रहते हो बट किसी को ये पता चल गया ना इतने जूते पड़ने वाले हैं ना you won't know where to go.
3: The secret box.
2: Which is why अगर आपके पास कोई confession है तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान and for this moment मेरे साथ है मेरे mystery caller काफी दुख के सताए हुए प्राणी हैं ये hello दुख के सताए हुए mystery caller प्राणी
4: hi Roshi hi
2: हाय मिस्ट्री कॉलर आपके आवाज़ सुन के और आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे हाय की जगह हाय हाय कहने का मन कर रहा है
4: मुझे भी बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मुझे शेयर करना है आपके साथ मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो सॉल्यूशन चाहिए मुझे
2: बोलना
4: अभी 2-3 महीने पहले मेरी जो गर्लफ्रेंड है मतलब अब वो एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी है क्योंकि मेरे साथ उसने चीट करा है तो वो अपनी नानी के यहाँ पे गई हुई थी तो वहाँ पे जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं तो उसके साइड में एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम सनी था तो उसके साथ उसने फिजिकल हुई वो चीट करा और मुझे पता चल गया वो उसने मैंने सारी चैट्स पढ़ी और उसने मेरे को है ना मेरे फोन में हैंगआउट्स गूगल हैंगआउट्स कर रखा था लॉगिन तो मैंने वहां से सारी उसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने खोल के देखा तो तब मुझे पता चला उन सबके बीच में मतलब जो कुछ हुआ है उन दोनों के बीच में तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था
2: How did you feel? मतलब इमेजिन करना randomly नोटिफिकेशन आ रहा आपके फोन पे आपको लग रहा है कि ये मेरा गूगल हैंग आउट का नोटिफिकेशन है एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज लाइक योर गर्लफ्रेंड इज सेइंग आई लव यू बट नॉट टू यू बट टू सनी भाई साहब
4: उससे पहले मुझे भी लगा था कि मुझको प्यार करते हैं लेकिन बाद में मुझे पता चला जब उसने चीट किया तो ये सब झूठ था
2: तो ठीक है मिस्ट्री कॉलर
4: हाँ मतलब थोड़ा सा
2: डू यू थिंक इफ आई रोशिफाई यू यू विल फील थोड़ा सा बेटर
4: या
2: इतना क्यूट है ये ले यार
5: यू've been roshified
2: और रोशिफिकेशन के साथ साथ दो किसेस भी ले ले मुफ्त मुफ्त मुफ्त अब कैसा लग रहा है
4: अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे
2: ये बहुत सही है मतलब अभी इतनी दुखियारी आवाज थी तेरी और अब कह रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बट आई होप दैट योर नेक्स्ट गर्लफ्रेंड एक्चुअली डज राइट बाय यू बिकॉज यू साउंड लाइक सच अ नाइस गाय अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई बहुत ही अमेजिंग हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है थैंक्स टू सोशल मीडिया डूड सीरियसली हिट मी अप ऑन सोशल मीडिया मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE सो गो अहेड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

प्लीज डोंट जज मी बाय द मूवीज दैट आई वॉच, बिकॉज कभी कभी मैं मजबूर हो जाती हूँ अपने अंदर की आंटी के हाथों कि मैं बहुत ही साइकोटिकली क्रेजी फिल्म देखूँ, जैसे कि मैंने रिसेंटली देखी जुदाई, जिसमें उर्मिला मटोंडकर एक यंग एंड हैपनिंग करोड़पति होती है जिसे शादीशुदा अनिल कपूर से प्यार हो जाता है, तो वो अनिल कपूर की वाइफ यानी कि श्रीदेवी से कहती हैं कि मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पति को खरीद लेती हूँ, और इंस्टेड ऑफ श्रीदेवी लूजिंग द प्लॉट एंड सेइंग कि भाई तेरा दिमाग खराब है, अपना रास्ता नापे और अपने दिमाग का इलाज कराएं, AKA लोबोटमी, शी टेल्स उर्मिला कि कितने में खरीदेगी मेरा पति। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लीजिए कोई आपके पति को या बॉयफ्रेंड को खरीदना चाहता है, किस प्राइस पर आपका ईमान डोल जाएगा और आप कहेंगे कि हाँ ठीक है ले लो इसको, आप दो 10 करोड़ या 12 करोड़ या एक बंगला इन्वेस्टमेंट जो भी है, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नो ऑफेंस टू योर पार्टनर्स, बट एट व्हाट प्राइस वुड यू सेल योर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड लाइक श्रीदेवी डिड टू उर्मिला इन जुदाई। और ये आइडिया देखो बिल्कुल मेरा नहीं है, मैंने तो सिर्फ पिक्चर देखी और आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिसका जवाब आप मुझे इंस्टा या FB पर दे सकते हो। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochIE, सो हिट मी अप बेबी विद दिस रियली हाइपोथेटिकल आंसर, एंड व्हाटएवर यू डू कहीं मत जाना क्योंकि वाह

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: रोशी थ्योरी नंबर 428 एंड चांसेस हैं कि इस थ्योरी को एक्चुअली बैकअप किया जा चुका है विद रिसर्च. आई डोंट नो, आई हैवंट इवन बॉदर टू चेक बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इफ यू आर विद समबडी जो एक बहुत अच्छा किसर है देन चांसेस हैं कि उसके बाद के जितने भी बेसिस हैं गेटिंग नॉटी इज गोइंग टू बी सुपर फन. लेकिन अगर इंसान किसर ही बुरा है तो उसके बाद आपकी किस्मत इन द रोमांस सेक्शन काफ़ी ख़राब होने वाली है. मैंने ऐसे कई रिस्क लिए अपनी ज़िंदगी में वेयर आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है बंदा ख़राब किसर है बट आई एम श्योर ही विल बी अ ग्रेट लवर इवेंचुअली. बट ऐसा नहीं हुआ मुन्ना. और अगर मौसी जी आपके साथ इसका बिल्कुल विपरीत हुआ है, यू एंडेड अप विद अ बैड किसर बट फाउंड अ ग्रेट लवर, देन दुनिया के शायद आप वो 1.5% के लोग हो जिनके साथ ये अच्छी किस्मत की बातें हुई हैं. और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड वाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.
3: तेरी मम्मी की जय

बेहतरीन, सच बोला था शाहरुख इश्क कमीन, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे, बादशाह के गाने सारे याद है।

0: पोए बादशाह।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: Only on Radio Mirchi, it's hot।

0: R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
3: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
3: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
4: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: comment question.
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, कबड़क कबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: Grand Finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

आप सीरियसली अपनी वर्गो गर्लफ्रेंड को बहुत चार्म करना चाहते हो ना, आप चाहते हो दैट शी लुक्स एट यू एंड लुक्स एट योर सराउंडिंग्स. आपके घर में वो पहली बार आई है एंड शी फील्स टोटली टर्न्ड ऑन. इसके लिए आपको एक बहुत ही इंटेग्रल, इम्पॉर्टेंट और फिनेस वाला काम करना है, और वो काम है घर की सफाई. ट्रस्ट मी, अगर एक वर्गो लड़की है या लड़का है, द वन थिंग दे विल वॉच आउट फॉर इज आप दिन में कितनी बार नहाते हो, आप दांत कितनी बार ब्रश करते हो, आपके मुंह से बैड ओडर तो नहीं आ रही है, और आपका घर साफ है या नहीं. अगर उन्हें आसपास आपके सॉक्स ऐसे गिरे पड़े मिले, या फिर खाने के थोड़े थोड़े पिज्जा के स्लाइसेस या ड्रॉर के आसपास गिरे हुए पड़े, ट्रस्ट मी दैट पर्सन विल डंप यू राइट देयर, अगर वो एक ट्रू ब्लू वर्गो है. सो द ट्रिक टू रियली नेलिंग द रोमांस गेम विद द वर्गो is simple. साफ सुथरे हो जाओ, दो की जगह चार तौलियों का इस्तेमाल कर लो, अपनी टी शर्ट को ब्रांड न्यू बनाकर पहनो एंड दे विल लव यू फॉर इट. आई मीन रियली ऑल यू नीड इज साबुन एंड टूथब्रश. व्हाट अमेजिंग प्रॉप्स फॉर अमेजिंग रोमांस विद अ वर्गो. इसे सीरियसली लेजिट ट्राई करके देखो, यू विल लव इट, यू विल लव हाउ सक्सेसफुल इट इज. और उसके बाद मुझे थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और जोडियक साइन है, You guessed it, Virgo. On that note, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, It's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: This is my personal tribute to all you guys out there who are dating women who are completely crazy. Okay, so एक तरह की औरतें होती हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत वो हैं, सबसे इंटेलिजेंट वो हैं, सबसे स्मार्ट वो हैं. It's another thing कि इनमें से तीनों वर्च्यूज में से उनके पास एक भी नहीं होता. That's not the point, क्योंकि उनके डेलुलू का क्या ही सलूलू है. They will walk around everywhere looking as if बस दीपिका पादुकोण के बाद अगर कोई हॉट एंड हैपनिंग है तो वो वही है. एंड द पुअर मैन हैव टू इंड्योर वीमेन लाइक दिस. जो चलती ऐसे हैं तो लगता है कि भाई बतख चल रहा है, जो बात करती तो ऐसे लगता है कि डड्डू बात कर रहा है, लेकिन इनके दिमाग में इनको लग रहा है कि मिस इंडिया का पैजेंट अगले साल हम ही जीतेंगे बबुआ. और अनफॉर्चुनेटली ना ऐसा एक इंसान हमारे ऑफिस में भी है. इतनी क्रिंज फीलिंग आती है ना उससे बात करके, बिकॉज यू आर लाइक यार बेब तो सही बंदी होती है अगर तू थोड़ा डेलुलू से हट जाती, बट वो से हो नहीं पा रहा है. तो अगर आप भी ऐसे एक रिलेशनशिप में हो वेर यू आर डेटिंग समवन हु इज कम्प्लीटली डिलूजनल अबाउट लाइक हर ऑसमनेस एंड शी इज़ नॉट, बट आपको उस पर इतनी दया आती है कि आप ब्रेकअप नहीं कर पा रहे, मेरी तो सिंपथीज ऑलरेडी आपके साथ हैं. अपना नंबर भेजो, अभी फ़ोन करूँगी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड क्लियरली I'm terribly offended right now. On that note, hit me up on the Gram or Facebook and whatever you do, kahin mat jana jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: So you're totally in love with your cousin और इसीलिए आप बार बार अपनी मासी के घर जाते रहते हो बट किसी को ये पता चल गया ना इतने जूते पड़ने वाले हैं ना you won't know where to go.
3: The secret box.
2: Which is why अगर आपके पास कोई confession है तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान and for this moment मेरे साथ है मेरे mystery caller काफी दुख के सताए हुए प्राणी हैं ये hello दुख के सताए हुए mystery caller प्राणी
4: hi Roshi hi
2: हाय मिस्ट्री कॉलर आपके आवाज़ सुन के और आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे हाय की जगह हाय हाय कहने का मन कर रहा है
4: मुझे भी बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मुझे शेयर करना है आपके साथ मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो सॉल्यूशन चाहिए मुझे
2: बोलना
4: अभी 2-3 महीने पहले मेरी जो गर्लफ्रेंड है मतलब अब वो एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी है क्योंकि मेरे साथ उसने चीट करा है तो वो अपनी नानी के यहाँ पे गई हुई थी तो वहाँ पे जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं तो उसके साइड में एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम सनी था तो उसके साथ उसने फिजिकल हुई वो चीट करा और मुझे पता चल गया वो उसने मैंने सारी चैट्स पढ़ी और उसने मेरे को है ना मेरे फोन में हैंगआउट्स गूगल हैंगआउट्स कर रखा था लॉगिन तो मैंने वहां से सारी उसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने खोल के देखा तो तब मुझे पता चला उन सबके बीच में मतलब जो कुछ हुआ है उन दोनों के बीच में तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था
2: How did you feel? मतलब इमेजिन करना randomly नोटिफिकेशन आ रहा है आपके फोन पे आपको लग रहा है कि ये मेरा गूगल हैंगआउट का नोटिफिकेशन है एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज लाइक योर गर्लफ्रेंड इज सेइंग आई लव यू बट नॉट टू यू बट टू सनी भाई साहब
4: उससे पहले मुझे भी लगा था कि मुझको प्यार करते लेकिन बाद में मुझे पता चला जब उसने चीट किया तो ये सब झूठ था
2: तो ठीक है मिस्ट्री कॉलर
4: हाँ मतलब थोड़ा सा
2: डू यू थिंक इफ आई रोशिफाई यू यू विल फील थोड़ा सा बेटर
4: या
2: इतना क्यूट है ये ले यार

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है आपके साथ दैट यू लव समवन अ होल बंच और फिर किसी रीजन से आप दोनों इकट्ठे नहीं हो एंड व्हेन दैट ब्रेकअप हैपेंस आपको ऐसे लगता है दैट समवन हैज लिटरली पंच्ड यू इन द गट. अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग हुई है ना देन लेट मी टेल यू दिस, डॉक्टर्स कहते हैं कि द फीलिंग ऑफ पेन जो आपको इमोशनली फील होती है ब्रेकअप के टाइम वो एक्चुअली फिजिकली भी फील होती है. सो दैट फीलिंग, वो जो किसी ने मुक्का मार दिया, इज अ रियल थिंग. और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने पंच इन द गट कर दिया है बिकॉज यू आर हार्ट ब्रोकन, आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज़ राइट अबाउट इट. पता है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने फीलिंग्स को लिखते हो ना, यू कैन नॉट ओनली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बेटर, बट समहाउ ऐसा लगता है कि ये फीलिंग्स आपको ट्रैप नहीं कर रही हैं, कि अपने ही ख्यालों में चक्रव्यूह में फंस के आप मर नहीं जाओगे घुट घुट के. देर माइट बी अ वे आउट, आई डोंट नो. बट अगर आपको अभी एज यू हियर माई वॉइस all you can feel is just miserable and heartbroken, let me tell you, I know how that feels. And I know ki aisi feeling sirf tab aati hai jab aap

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1,
3: गो। आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है गाना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। दिस इज रंग बरसे
4: नंबर 20।

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे भाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए। कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप इसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: माशूका एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है, लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहिए, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और एआर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माई रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: Top 20 Rewind.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.
4: Hit, hit, hit, hit, hit gana. Hit.

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. Jealousy को पैशन बना दिया है, possessiveness को प्यार, stalking को persistence और manipulation को relationship test. कभी-कभी cheating को भी true love कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे, रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। And that is what Cocktail 2 tried to explore when I watched it on OTT. यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए that audience rom-coms चाहती है, toxcoms नहीं। We don't want toxic love. But from toxic love, I want to play sweet innocent love. बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया। It's my special request of the week.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अवाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता है। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वाज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक कि अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माय वॉइस, समवन comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, is gaane ke liye bhi usne mere liye ladai ki hai. Usne bola sab ka re, Amal ne itna achha gaya, mujhe kyun gawa rahe. To maine bola, aisa mujhe chahiye. I said, in log kisi ki bhi nahi hai. I said, meri requirement hai that you at least see if you like the song, pura ban gaya, check it out. So it was just about 3-4 months before Abhi that song came that he started recording and revisited the song 2-3 times.
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर वन बन गई है। This is ये आवारापन, the new undisputed number one song on the Mirchi Top 20.
2: Number one.

0: पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल, दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी बात है तो जरा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ओवरसाइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि यू नो बहुत ही कूल लगते हैं आजकल। लेकिन आपको पता है कि ओवरसाइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने। पुरानी जीन्स पे ही हाय, मैं हूँ श्रेया। मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे। तो जब मैंने जाकर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उन पर बहुत खूबसूरत लगता था। प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती हैं कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उसपे रेड लिपस्टिक, पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। सो मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बन के ठन के आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम। भाई शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट जीना तमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ाज, आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ाज। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वॉज टेलिंग मी कि डिम्पल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि अब सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीना तमान। पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीना तमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीना तमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरी सॉन्ग्स किए हैं ना, आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, सो कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो, तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते हैं रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। So, आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जाकर के कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

बैंग्स कह लो, फ्रिंज कह लो, ये सब लाने वाली थी साधना जी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स जो उस जमाने की हीरोइंस लाई और हमने इस जमाने तक आज तक हम उनको ट्राई करते हैं, उनको पहनते हैं। इनका माथा बहुत चौड़ा था तो एक्चुअली में डायरेक्टर साहब ने इनसे कहा था कि ये ना अपने माथे को ढकने के लिए कुछ आगे के बाल कटवा लें, और साधना जी ने जब ये किया तो उनकी स्टाइल इतनी फेमस हुई कि कॉलेज की हर लड़की उस समय बैंग्स, तब ये बैंग्स नहीं कहे जाते थे, इनको साधना हेयर कट कहा गया था जो आज भी इस नाम से चलता है, कभी कभी हम इन्हें बैंग्स कह देते हैं, कॉलेज की हर लड़की। हाँ, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, फोरहेड पे थोड़े से बाल कटवा करके साधना कट ही लेके घूमती थी। पुरानी जीन्स पे आज उस जमाने की फैशन की बातें हो रही है तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
6: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे
1: हाईवे।
0: अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: ना लागे
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा।

0: धन मिर्ची हॉट माइक
1: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हमें इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी ऐसा कहते हैं कि यार सामने वाला ठीक हो जाए इसलिए हम सॉरी बोल देते हैं। गलती शायद आपकी हो भी नहीं लेकिन आप बोलते हैं यार वो तो नहीं सॉरी बोलेगा, मैं जानता हूँ उसको, मैं ही सॉरी बोल के खत्म करता हूँ ताकि बातचीत तो शुरू हो। तो ये आप कहने सही नहीं है।
4: नहीं, वो सही है क्योंकि आपकी स्थिति तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना। वो तो ठीक है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है एंड नाउ आप जाकर के सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आत्मा कमजोर है। आपको लगता है अगर आप थोड़ा सा बेंड हो गए उसके मन का वेस्ट फुल स्टॉप लग जाएगा एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, चाहे वो घर में कोई रिश्ता है, चाहे वो टीम में कोई बात है। और फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो जो भी आपको बात उनको कहनी है या समझानी है आप समझा सकते हैं, दैट इज ओके। यहाँ आप बिल्कुल ठीक है, आपके मन की स्थिति उन पर डिपेंडेंट नहीं है। आई एम टॉकिंग जब आप बहुत दर्द में है। आप बहुत दर्द में हैं, आप इमोशनली उन पर डिपेंडेंट है।
3: अच्छा, हाँ, अच्छा, समझ गया मैं।
4: कई बार ऐसे रिश्ते भी होते हैं ना, यू सी यंग पीपल ऑल्सो, वो फिर एडवांटेज ले लेंगे आपका। आपको क्या लगता है जब तक वो मेरे से बात नहीं करता मुझे ठीक नहीं लगता, देन दे कैन एक्सप्लॉइट यू ना।
3: बिल्कुल,
4: आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप फिर सारा दिन सॉरी सॉरी कहते रहते हैं, अपोलोजाइज करते हैं कि वो ठीक हो जाएं, सो यू विल फील गुड। दैट मींस यू आर इमोशनली
3: डिपेंडेंट
4: ऑन देम, दैट इज नॉट अ गुड थिंग।
3: तो वो दूसरे का ईगो है कि आप जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है जब तक ये छोटे वाले सॉरी हमसे ना बोले हमारी जिंदगी तो चलती रहेगी लेकिन ये दर्द में रहेगा।
4: हो सकता है कभी कभी आजकल लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं,
3: तो वो कंट्रोल का ही एक और फैसेट हुआ।
4: का एक और फैसेट है। इसलिए हमें अपनी स्थिति की जिम्मेवारी खुद उठानी होती है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाला, अगर मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो कि सामने वाला क्या बोल रहा हो, मैं अपने मन में गीत गा रहा हूं, मैं अपने पे विचार पे कंट्रोल कर रहा हूं, तो सामने वाला कभी कभी चिड़के भी कह सकता, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी बोलता हूँ, तब क्या किया जाए?
2: अभी वो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात लेकिन बिल्कुल सही है, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस। वो जब अपनी बहुत अपसेट होते हैं तो वो हमें इंसल्ट करके या क्रिटिसाइज करके थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम प्रोवोक हो जाते हैं तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है
1: जी।
2: और अगर वो हमें नहीं कंट्रोल कर पाते,
1: हाँ।
2: अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, इट इज नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, इट इज जस्ट कि अगर आप गलत तरीके से बात करते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती, वो मेरे मन की मास्टरी है, वो मेरा एफर्ट है, आई चूज टू स्टे काम। और ये हर फील्ड में होता है। आज क्रिकेट के फील्ड में कोई स्लेजिंग कर रहा है, आज ऑफिसर्स में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है, आज कहीं पर कोई बॉस डांट रहा है, तो हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ तो बिल्ड करनी पड़ेंगे ना। अगर हम वो बिल्ड नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब भी होते रहेंगे। तो हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आपकी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब जब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रोवोक नहीं कर पाते तो आप और अपसेट होते हैं, पर ये तो इमोशनली वीक हुआ ना, सामने वाला इमोशनली वीक हुआ, इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है।
1: तो ये सोचने के सामने वाला इमोशनली वीक है, वो बेचारा मन से बीमार है, और उसके प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट भेजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए।
2: पहले अपने को उसकी एनर्जी से डिटैच करना जरूरी है। हम किसी की हेल्प तब कर सकते हैं
1: जब हम स्ट्रॉन्ग हैं,
2: जब हम स्ट्रॉन्ग हैं। और कोई भी अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से बात करता है, वो पोजीशन में बड़ा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब पोजीशन के पावर में बड़ा हो सकता है, पर इनर पावर में वो बहुत
1: वीक है,
2: सोल पावर में वो बहुत वीक है। नहीं तो वो बहुत काम से, डिग्निटी से, ग्रेस से बात करेगा। बात करें, बात ना करें ऐसा नहीं है, जो कहना है कहें, लेकिन ग्रेस डिग्निटी जरूरी है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अपने जीवन के प्रिंसिपल्स हमें अपने एक्सपीरियंसेस से ही बनाना चाहिए। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: हम जो बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, कई बार होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा बोला जाता था कि तुम सॉरी बोलो, तुम बड़े हो। मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हूँ, तो हमारे पापा मम्मी भाई बहन जो कजन्स आंटी मासी मामा चाचा चाची हमेशा ये सिखा के गए कि बड़ों को हमेशा झुकना जरूरी होता है, क्योंकि सही पाथ तो तुम ही दिखाओगे, पथ जो है वो तुम्हें दिखाना है। और उस समय भी बड़ा मुझे परेशानी होती थी कि हर बार सॉरी मैं ही क्यों बोलूं, कभी कभी गलती नहीं होती थी, बच्चे थे हम समझते नहीं थे। अब वो बात दिमाग में कहीं ना कहीं छप गई, तो मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, ऑफिस में भी कभी कोई होता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ कि यार तुम बड़े हो सॉरी बोल दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो कभी कभी मुझे भी ये सुनने को मिलता है मैं ही हमेशा क्यों बोलूं, गलती आप उसको कुछ नहीं बोलते, तो इसका क्या निवारण है?
6: हमारे जो वाइज लोग होते थे वो हमेशा कहते थे कौन सा पेड़ झुकता है,
5: जो बड़ा होता है, जो ऊंचा
6: होता है,
5: जो फलों से लदा होता है। हाँ,
6: मना झुकना भले हमारे अभी कमजोरी समझे जाए, पर झुकना एक्चुअली कमजोरी नहीं होती।
5: लेकिन इसको समझा क्यों जाता है?
6: आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप कर नहीं पाते कोई चीज तो आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो कि ये गलत है। ये कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इस समय सोसाइटी में, चाहे इस ईंट का जवाब पत्थर से है, अगर कोई कहेगा प्यार से दो तो उसको भी कमजोर समझा जाता
5: बिल्कुल,
6: है
5: बिल्कुल।
6: कोई सच बोलता है हमेशा उसको भी कमजोर समझा जाता है
5: बिल्कुल।
6: कोई झुक जाता है उसको भी कमजोर समझा जाता है,
5: सॉरी बोलता है वो भी कमजोर है।
6: ये कोई एक चीज नहीं है, एंड दैट इज वाई समटाइम्स आपको अपने जीवन के प्रिंसिपल्स अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करने होते हैं। कभी कभी हमें वो चीज करके कम्फर्टेबल भी लग रहा होता है, पीसफुल भी फील हो रहा होता है, रिश्ते भी ठीक हो रहे होते हैं, हम आगे भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन केवल वो सुन सुन करके हम कहते हैं नहीं, शायद सब कहते हैं ना कि तो ये कमजोरी है तो गलत होगा। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो गलत है कि नहीं? कहते तो ये है कि जो झुकता है उसके सामने सारा संसार झुकता है, और जो वो पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है तो तूफान आता है तो सबसे पहले वो ही गिरता है।
5: बिल्कुल,
6: झुकने का मतलब देखो दो प्रकार होते हैं, सबमिसिव एटीट्यूड वो वाला झुकना नहीं है। कई बार कई चीजें राइट होती नहीं है पर उसको वो टैगलाइन दे दिया जाता है, तो हम कोई झुकने का वो मतलब नहीं है कि कोई हमें ग्रांटेड ले रहा है या सबमिसिव एटीट्यूड है। यहाँ झुकने का मतलब सिर्फ इतना है लेट गो करना, हो गया ना। जैसे आपने कहा कि अभी तो मदर चली गई, अब तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं रही।
5: बिल्कुल,
6: तो अब आपको कितना उस चीज को रिग्रेट होता है, बहुत लोगों को रिग्रेट होता है कि क्या फायदा हुआ, वो 4 दिन हमने जो खराब कर दिए वो क्या फायदा हुआ। एंड इसीलिए हर रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट रिफ्लेक्ट कर ले, न दुख देना है न दुख लेना है।
5: बहुत बढ़िया,
6: देना भी नहीं है लेना भी नहीं है, और अगर गलती से दे दिया है आपने दे दिया है, द ओनली थिंग इज जस्ट अपोलोजाइज। आपका भी व्यर्थ खत्म हो जाता है, उनका भी व्यर्थ खत्म हो जाता है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है। करके देखें, वी आर डूइंग इट फॉर आवर पीस ऑफ माइंड।
5: बहुत बढ़िया,
6: वी आर डूइंग बिकॉज आई वैल्यू दैट रिलेशनशिप।
5: यस,
6: आई एम नॉट डूइंग टू प्रूव इट टू एनीबॉडी।
5: बहुत बढ़िया,
6: राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है, आई फील गुड।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है, पल्लव है, वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पल्लव है, मैं अहमदाबाद से हूँ और कल मैं अपने कॉलीग के साथ कुछ बात कर रहा था और एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, हम दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुई उस वजह से वो बहुत जोर से मुझ पे चिल्लाने लगे, तो मैं क्या करूँ? ये एंगर मैनेजमेंट का किस्सा लग रहा है।
3: कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और सामने वाला थोड़ा हर्ट हो जाता है, भले हमारा इंटेंशन नहीं भी है। थोड़ा समय उन्हें ठंडा होने दे, बिकॉज अगर आप गर्म तवे पर भी अगर ठंडा पानी डालेंगे ना तो वो उछलता है। तो कभी कभी जब सामने वाला बहुत नाराज है, अपसेट है और हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि समझने के लिए भी मन थोड़ा शांत चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: सो एक दिन दो दिन का गैप डाले, और अगर उस बीच में गैप तो डालना है, द गैप इज टाइम का गैप तो डालना है, लेकिन उस टाइम के गैप में एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। जितना समय हम उनसे बात नहीं कर रहे होते, मन में जरूर बात कर रहे होते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल।
3: और वो जो मन में बात कर रहे होते हैं, वो कई बार हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव हो जाती है।
2: उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या जरूरत है, हर बार वो चिल्लाते हैं, जस्ट बिकॉज इज अ बॉस, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं सोचना है।
3: छोटी छोटी बातों में कैसे अपसेट हो जाते हैं, इतनी जोर के चिल्लाने की क्या बात थी, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर इतने सेंसिटिव है, इतने दिन हर्ट रहते हैं, ये चलता रहता है, चलता रहता है। ये गर्म तवे को और गर्म करने जैसा है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन तो उन तक जाएगा ना। इसीलिए अगर इफ यू रियली केयर अबाउट दैट रिलेशनशिप, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप टाइम तो दे रहे हैं लेकिन साथ साथ आपके थॉट्स और वाइब्रेशन हील करते हैं। ये चीज हमें समझनी है कि हीलिंग थॉट्स और वाइब्रेशन से होती है। जैसे हम किसी स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं मंदिर में, तो हमें सुकून अनुभव होता है कि नहीं? तो वहाँ का वाइब्रेशन ही तो सुकून दे रहा होता है। वो वाइब्रेशन वहाँ के आने वाले लोगों ने ही तो बनाया होता है। सब आते हैं, कोई वहाँ पर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उससे एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है। अब वो जो व्यक्ति थोड़े से दर्द में है, व्हेन आई थिंक नाइस अबाउट देम, हम उनकी जो विशेषता

0: हैं, जो क्वालिटीज हैं, जब भी उनकी स्मृति आए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट देम, अगर हम अच्छा सोचते हैं, वो जल्दी हील होंगे। और हीलिंग होने के बाद ही, हीलिंग मना जब आपको लगता है थोड़े से नॉर्मल हो गए, तवा ठंडा हो गया है, तब ज़रूर बात करनी चाहिए। कभी कभी हम बात नहीं करते, वो मिसअंडरस्टैंडिंग गांठ रह जाती है, तो वो गांठ को सुलझाना भी जरूरी है। तो अपनी बात कहकर के उसको जल्दी ठीक करने में ही अच्छा है।
1: जी, जगजीत सिंह की बहुत प्यारी गजल है, उसमें वो कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। तो बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं कि एक बार गांठ लग गई तो बहुत समय लगता है उसको खुलने में, तो थोड़ा समय देना जरूरी है।
0: इसमें दो बातें हैं, एक बात ये जो आपने कही वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है, गांठ हो तो उसको खोल लेना चाहिए। कभी कभी अगर रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपको पता ही होता है कि ये जो हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ ये ईगो के कारण हुआ, कुछ है ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है कि आपकी मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में वो आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने मुझे कुछ कह दिया, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा उस गांठ को सुलझाने के जगह उस गांठ को तोड़ के फेंकने में अच्छा है,
1: भूल जाओ उसके बारे में,
0: क्योंकि वो कुछ नहीं था, वो एक ईगो क्लैश था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो मिसकम्युनिकेशन नहीं था, वो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे गलत समझा, एक्चुअली हम एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है, तो उस समय किसी कारण से हमने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, बट देन अगर अब हम फिर बैठेंगे ना उसको
1: सोचने के बारे में,
0: कार्ड खोलने के लिए, तो कई बार वो राय का
1: और उलझ जाता है, राय का पहाड़ बन जाता है। बिल्कुल सही कह रही है।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्यार की वाइब्रेशन किसी को हील भी कर सकती है, क्योंकि प्यार हमारा नेचुरल नेचर है। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और कभी कभी मैंने देखा है कि ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने अपने पिताजी से ये बात सीखी है कि कितना भी कुछ हो जाए वो फोन हमेशा करते हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो सॉरी बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा फोन करते हैं। हम लोग शायद चूक जाते हैं कि कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई बात पे अनबन हो जाती है तो हम फोन नहीं करते, पापा हमेशा फोन करते हैं, और कैसे हो, सब ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, एक्सेट्रा। तो मैंने देखा है अब मेरे साथ वो मन शांत होता है, तो जब पापा झुक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं झुक सकता।
4: ये आपने बहुत सुंदर बात कही। हमारे कल्चर में पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपको सॉरी बोलना है, आई लव यू बोलना है, ये सब नहीं था,
3: वो अनसेड है।
4: सॉरी का मतलब क्या होता था, जैसे उन्होंने कॉल किया और बात करना शुरू कर दिया, तो वो एक तरीका है कहने का कि भाई मैंने कुछ पकड़ के नहीं रखा है,
3: हाँ, मैंने छोड़ दिया, तुम
4: मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। इट इज अ वे ऑफ सेइंग दैट। हमें भी कोई जा करके किसी को सॉरी नहीं कहना होता,
3: बिल्कुल
4: बात करना शुरू कर दो, विच इज जस्ट टेलिंग अनदर पर्सन भाई आपको जब छोड़ना हो छोड़ देना, मैंने तो छोड़ दिया,
3: मैंने
4: छोड़
3: दिया
4: कुछ भी पकड़ा
3: और उससे ज्यादा वो मुझे क्या बोल रहे हैं बिना बोले कि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत जरूरी है, तो मैं तो कुछ पकड़ के नहीं रख रहा हूँ, और वो साइलेंटली ये भी कह रहे हैं कि तुम भी मत पकड़ के रखो।
4: वो एक्चुअली क्या होता है, जब सामने वाला आपसे बात करना शुरू करता है तो वहाँ से प्यार की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएंगे। जो आपने अभी पकड़ के रखा हुआ था, आपने अपनी जो लव की एनर्जी उसको ब्लॉक कर दिया था, उसके आगे एक दीवार बना दी थी। एक्चुअली हमारी जो नेचुरल नेचर है ना, वो लव है। लव कम्फर्टेबल है हमारे लिए, वो प्योर एनर्जी को रेडिएट करना वो बहुत कम्फर्टेबल है। हम कभी कभी उसके आगे दीवार डाल देते हैं, मतलब मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, उसने मुझे इग्नोर किया था। अब जब हम ये करते हैं ना, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Richie Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम उन्होंने SMS बताया है, पूरा नाम नहीं लिखा है। वो कहते हैं कि ओल्ड एज में रिटायरमेंट हो गए मेरे, लेकिन सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं वो स्लोली अब डिसकनेक्ट हो रहे हैं, या वो मुझसे हो रहे हैं या मैं उनसे हो रहा हूँ, वो उन्होंने नहीं लिखा है। अब क्या करूँ, प्लीज एडवाइस।
2: आपका क्वेश्चन सुन करके मुझे, कल ही मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी, न्यूज़ में थी शायद, कि एक व्यक्ति था मना जो थक करके बस में जा रहा था, और फिर एक ओल्ड मैन आया तो उसने अपनी सीट उनको दे दी क्योंकि बुजुर्ग सा था। और वो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि जैसे बहुत थका हुआ था, दिल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी बुजुर्ग को देखा तो सीट दे दी, और फिर हल्की सी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने उसको पूछा कि आप कैसे हैं, कहाँ काम करते हैं, यानी फेल्ट कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था बहुत काम था, काइंड था। थोड़ी बातचीत होती रही, उसके बाद स्टॉप आ गया उस बुजुर्ग व्यक्ति का उतरने का, और फिर उसने कहा I really needed to talk. मैंने 4 दिन से किसी से बात नहीं करी थी, मुझे सच में किसी से बात करने की ज़रूरत थी। And he was sharing कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट कैसे किसी के जीवन में थोड़ी सी लाइट लेकर के आ जाते हैं। और वो बहुत टायर्ड था, लेकिन छोटा सा एक कर्म हेल्प का, छोटा सा कर्म एक काइंडनेस का, he felt that The day meant something to him. जो वो इतना ordinary दिन था उसका कुछ मीनिंग हो गया। तो हमारे जो ओल्ड एज के लोग हैं, ऑल ऑफ अस हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम थोड़ा थोड़ा उनसे बातचीत करें। दिस इज़ फॉर द यंग जनरेशन। आप पार्क में जाते हैं, आप कभी उनसे मिलते हैं, हम कई बार उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट हमें लगता है ये क्या हमें इतना चिपकते रहते हैं, ये क्यों हमसे इतनी बात करते रहते हैं, बट दे रियली आर लुकिंग फॉर सम कंपनी। बच्चे बिजी हैं, जॉब पर जाते हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है। सो दिस इज एक हम कोशिश कर सकते हैं, एक स्माइल, एक मिनट की बातचीत उनको कंफर्ट देता है। एंड सेकेंडली, जो है बुजुर्ग में वो इतने डिसहार्टन नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो, वो भी भारत में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं बातचीत करने की। कोई गार्डन है, कोई पार्क है, कोई कंपनी है, अकेले नहीं बैठे, नेगेटिव साइकिल चलना शुरू हो जाता है। आपको कोई सत्संग अच्छा लगता है वहाँ जाएं, वो भी नहीं अच्छा लगता है, तो कोई फ्रेंड्स के साथ किसी ग्रुप में जाएं, बातचीत करें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकाल करके बातचीत करें तो अच्छा लगेगा।
1: बहुत खूबसूरत।
2: नहीं तो अगर कोई ऐसी हॉबी है जो छूट गई है पीछे,
1: उसको शुरू करें।
2: हाँ, हम ये नहीं, सी एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो, समटाइम्स इट इज इन द माइंड मोर देन द बॉडी। अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मे बी आप उतनी स्पीड पे नहीं कर सकते, मे बी आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग क्योंकि एक तो वो प्रोडक्टिव होती है, मन को थोड़ा बिजी रखती है, वो हमें खुशी देती है। इट कुड बी जस्ट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग, गार्डनिंग, एनीथिंग थोड़े समय के लिए जो मुझे अच्छा लगता है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: छोटी छोटी बातों पर झगड़ा क्यों हो जाता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आपने जब बोला मेरे दिमाग में, मेरे दो बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं हम, और वो दोनों दोस्त बहुत ही जिद्दी हैं, मतलब अड़ के रहते हैं, और हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब इन दोनों में इतना जिद है, इतना मतलब भर के जिद है कि कई बार कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। और जब मैं ब्रोकर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कहते हैं आगे मीडिएटर साहब, तो मैं उनको कहता हूँ भाई क्या ही रखोगे, और वो कहते हैं नहीं भाई तुम उसको क्यों नहीं बोलते, और उसको बोलता तुम बोलते, उसको क्यों नहीं बोलते। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम चैट भी करते रहते हैं, तो उनकी बातें भी ऐसे चल रही होती है। सिंपल सी चीज है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट पे हमको खाने के लिए मिलना है, जो मेरा एक दोस्त है मान लीजिए उसका नाम ए है और दूसरा दोस्त है उसका नाम बी है, ए बी को कह रहा है भाई कौन से कुजीन खाना है, तो बी कहता है मुझे इटालियन खाना है, ए कहता है मुझे इटालियन पसंद ही नहीं है, इस बात पे झगड़ा हो गया। तो मैं कहता हूँ अरे कोई बात नहीं यार, जो मन है वो खाएंगे यार, हम मिल रहे हैं क्योंकि हम आपस से मिलना चाहते हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे हमारे जो ग्रुप में मैसेज चल रहा होता है, वो इस तरह के मैसेजेस होते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, वो बात कहीं और ही चली जाती है कि तुम्हें क्या लगता मैं फिजूल बैठा हूँ, मैंने तुमको बोल दिया मैं काम अभी नहीं कर सकता, वो सामने वाला बोलता मैंने कब बोला कि तुम फिजूल बैठे हो, तुमको लगता मैं फिजूल बैठा हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, और मैं सोच रहा होता कि ये बात तो कहीं और से निकली थी, कहाँ चली गई। तो ऐसे केस में क्या करें जब मुद्दा कुछ और ही है लेकिन अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि वो एक दूसरे पे ही निकलता है।
4: See, यही अगेन नाउ इसमें ईगो का क्या रूप है, सिद्ध और जिद।
3: सिद्ध और जिद,
4: ये दोनों ईगो का रूप है।
3: हाँ जी,
4: आप अगर कोई चीज को बहुत ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं या जिद कर रहे हैं, ये ईगो है। जो सिद्ध जिद नहीं करता वो अपनी बात कह देता है, ग्रेस से डिग्निटी से कह करके न्यारा हो जाता है।
3: अच्छा,
4: अब होता क्या है, आप बात के ऊपर आर्ग्यू करना शुरू करते हैं। ईगो मींस आर्ग्यूमेंट ओनली। ईगो है ही क्या, दो परसेप्शंस का, दो माइंडसेट का, दो सही का आर्ग्यूमेंट ही तो है ना, और क्या है। जो मुझे सही लगता है, जो आपको सही लगता है, हम आर्ग्यू कर रहे हैं। ईगो हमेशा आर्ग्यूमेंट में जाता है। अब अभी आर्ग्यूमेंट हो रही थी बात के ऊपर, थोड़ी देर के बाद वो बात आपको भूल जाती है और वो आर्ग्यूमेंट बात से चला जाता है अटैक व्यक्ति के ऊपर।
3: बिल्कुल, हाँ वही हो रहा है इस बार तो।
4: आप देखिए कितना सटल होता है, आप अगर रियलाइज नहीं करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद जैसे आपने कहा आपको ये भी याद नहीं होता
3: कि मुद्दा क्या था,
4: बात क्या थी, कहाँ से शुरू हुई थी, जो कहते हैं राय का पहाड़ बन जाता है।
3: बिल्कुल।
4: सो ईगो क्या, अपने बात को सिद्ध जिद करना शुरू किया, उससे जाते जाते यू स्टार्ट अटैकिंग द पर्सन। अब आप पर्सन को जब अटैक करते हैं तो आपको लगता है कि वो गलत है, पर्सन गलत है ना, अभी तक तो बात गलत थी, अब पर्सन गलत है। फिर आप पर्सन तक ही नहीं रहते, उसके पास्ट पर भी जाएंगे।
3: पिछली बार भी तुमने ये किया था, हर बार तुम ये करते हो, तुम्हारी यही प्रॉब्लम, तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो, अब मैं यहाँ साइड में बैठ के देख रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है।
4: तो फिर हुआ क्या, एक्चुअली में आप भी हर्ट हो गए, और आपने जो हमने कहा था ईगो हर्ट करती है, आप खुद भी हर्ट हुए, आपने उनको भी हर्ट किया। वहीं पर थोड़ा सा ही तो शिफ्ट लेकर के आना था ना, कि आपको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, आप अपनी जगह से सही हैं, वो अपनी जगह से सही हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, पर हमें इटालियन खाना है वो जरूरी नहीं है, हम वो कर सकते हैं। नाउ दिस इज सो बेसिक, हम तो बड़ी बड़ी बातों में भी ये चीज आती है। पर जैसे हम हर बार कहते हैं कि संस्कार, अगर छोटी बात में आप उसको चेंज नहीं करते तो आप बड़ी बात में भी नहीं कर सकते।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अच्छा, एक इंसान है जो बंबई में रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई के साथ, जो फैमिली में मेरे साथ रहते हैं, उनसे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है मेरी, मैं उनको सॉल्व कैसे करूं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे बड़े भाई को लगता है मैं सही हूं और वो अपनी जो सोल्यूशन है या जो भी डायरेक्शन है वो चाहते हैं कि मैं उसे फॉलो करूँ, तो रिलेशनशिप में देयरफॉर तनाव आ रहा है, मैं क्या करूँ?
2: रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इसीलिए होती है, ईगो क्या कहती है, ईगो हमेशा क्या कहती है, मैं राइट हूँ, दूसरे वाला कहता है मैं राइट हूँ।
1: राइट,
2: एक्चुअली में दोनों राइट होते हैं,
1: अपने अपने नजरिए से सही होते हैं,
2: अपने अपने पर्सपेक्टिव से दोनों राइट होते हैं। इसलिए सी, मन में तो बार बार यही चल रहा है ना, मैं राइट हूँ वो रोंग है, उनके मन में चल रहा है मैं राइट हूँ वो रोंग है, ये रिश्ता खराब कर रहा है, ये रिश्ता खराब कर रहा है। एक्चुअली हम दोनों अलग अलग हैं, एक सही एक गलत नहीं है। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम अलग अलग हैं, देन वी आर टू अगेंस्ट द प्रॉब्लम। अभी हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम प्रॉब्लम के अगेंस्ट हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं और समझे हम अलग अलग हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं, रिश्ते को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें और फिर एक पर्सपेक्टिव पर फाइनल जीरो डाउन करें, दोनों मिल करके वो जो हम पहले भी कहते थे एक और एक
1: 11
2: हो जाते हैं। तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएं, लेकिन प्रॉब्लम के अगेंस्ट जाएं।
1: तो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक दूसरे को सॉल्व करने की कोशिश ना करें।
2: मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, थोड़े समय के बाद आपको ये भी याद नहीं होता कि हम किस प्रॉब्लम पर बात कर रहे थे।
1: जी, क्योंकि एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं
2: हम ईगो क्लैशेस होते होते, फिर हम एक दूसरे की कमी पर बात करने लग जाते हैं।
1: तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम कभी नहीं सुनते हो, तो प्रॉब्लम तो दूर हो गया।
2: और फिर व्यक्ति नहीं, पहले उसके ऊपर बात करेंगे, तुम जैसे आपने कहा तुम्हारी यही प्रॉब्लम है या जो भी उसकी कमियां, फिर उसके पास्ट पर भी चले जाएंगे। आप हमेशा ऐसे करते हो, उस दिन भी आपने ऐसा किया था, क्योंकि अंदर में स्टोर तो सारा ही होता है। और फिर यहाँ तक भी कहेंगे सिर्फ आप ऐसा नहीं करते, लेकिन आपका सारा
1: परिवार ऐसा करता है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे, अब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे बारे में सब यही सोचते हैं, तो फिर वो बहुत कहीं और ही चला जाता है। प्रॉब्लम
2: तो रह जाती है, प्रॉब्लम राई होती है पर वो पहाड़ बन जाती है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पे कॉफी तो स्ट्रांग है ही, म्यूजिक उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, और एनर्जी स्ट्रांग गेस्ट है। अभी फिलहाल तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो, किड्स को स्कूल भेज रहे हो, या ट्रैफिक में फंसे पड़े हो, या ये सोच रहे हो यार इंडिया में तो अभी शाम होने वाली होगी। बस आज का मॉर्निंग डोज ऑफ मैडनेस एंड मिर्ची स्टार्ट्स हियर। हम बात करने वाले अगले कुछ घंटों में थोड़ी सी बॉलीवुड की, थोड़ी देश और दुनिया की, थोड़ी सी इंटरनेशनल बातें, थोड़ी सी अपनी जिंदगी की, और थोड़ी सी बीच बीच में रैंडम बातें भी करने वाले। लेकिन साथ में होने वाला है मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स योर्स ट्रूली, बोले तो मैं यानी कि प्रिसिला। सो अभी वॉल्यूम अप, चाय या कॉफी रेडी रखो, मिर्ची मॉर्निंग्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तुम्हारी प्लेलिस्ट तैयार कर ली है मैंने, और थोड़ी सी देर में एक कॉन्टेस्ट के बारे में भी बात करने वाली हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम कैसे जीत सकते हो कुछ अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स। बराबर से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिंस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and let's rewind the clock and find out कि आज के दिन पहले के सालों में क्या क्या हुआ था. 1914 में न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर द सन स्टार्टेड पब्लिशिंग द फेमस ग्रेट मून हॉक्स, एक फिक्शनल स्टोरी क्लेमिंग देयर वाज लाइफ ऑन द मून. 1916 में प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन साइंड द एक्ट दैट क्रिएटेड द नेशनल पार्क सर्विसेज, अमेरिका के ब्यूटीफुल नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. 1944 में पेरिस वाज लिबरेटेड फ्रॉम 4 years ऑफ जर्मन ऑक्यूपेशन बाय एलाइड फोर्सेस एंड द फ्रेंच रेजिस्टेंस, अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड वॉर टू. एंड 2012 में नासाज वॉयजर 1 एंटर्ड इंटरस्टेलर स्पेस, बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू डू सो. एंड बिफोर यू हेड आउट, मिर्ची करेगा बंधन पूरा, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो. रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन और भी मीठा बना रहा है नानक फूड्स, bringing sweetness to your life. This contest is brought to you by Nanak Foods. Register करने के लिए राखी टाइप करके WhatsApp पर भेजो अभी के अभी. नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. And साथ में भेजना अपना पूरा नाम and wait for our call. Also you can DM me at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS on Instagram and X. And this is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, जहाँ पर festive special offers चल रहे on 22 carat gold and diamond jewelry, not to be missed. Visit viranijewelers.com. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Coming up, Mirchi Dar Bangers only for you. Stay tuned and stay hot. Yeah.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आप सुनने वाले काफी इम्पोर्टेंट अपडेट।
2: गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची लिसनर्स, दिस इज जेसन दोशी फ्रॉम एसडी कैपिटल फंडिंग विद टुडेज एसडीसीएफ Mortgage market update. Treasury Secretary Bessent has been a lot in the news lately. Last week, he announced a bond buying program, which he hoped would lower mortgage rates, but unfortunately didn't. Now, he's set to announce economic sanctions on Iran, and we're keeping a close eye on this news. But listen, folks, don't get too caught up in trying to predict every rate movement. If the home and payment make sense today, you can always look at refinancing later if rates improve. And even ask us about our introductory rates, which are up to 1% below the current market rate. Call me today at 732-429-4050 and ask about these introductory promotional rates. Again, call me directly at 732-429-4050 or visit us at sdcapitalfunding.com. This is Jason Doshi with your SDCF Mortgage Market Update. Welcome home.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिव मॉर्गेज अपडेट। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची ब्रिज, दैट इज MIRCHIBRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो अब चेक करते हैं आज का वेदर का हाल चाल क्या है, बिकॉज यार हम देसीज के लिए वेदर फोकस का मतलब है कि आज पहन कर क्या जाना है। Right now we are at 61 degrees Fahrenheit. It's sunny and it feels a little bit warmer around 64 degrees Fahrenheit. So Mother Nature aaj keh rahi hai temperature kuch aur hai, vibe kuch aur hai. Afternoon mein around noon partly cloudy skies expected hai. Overall today's temperature will range from 59 degrees to 80 degrees Fahrenheit with the feels like range around 60 to 81 degrees Fahrenheit. Aur haan, kal ke comparison mein pretty much the same story. Yesterday was 60 to 80 degrees Fahrenheit aur aaj hai 59 to 80 degrees Fahrenheit. So weather department mein koi change nahi hua hai. Pretty much like sarkari daftar. Good news though ye hai ki aaj agar tum bahar jane ka plan kare ho, bada hi elaborate hairstyle banane ka plan kare ho, to jaise last 24 hours mein 0 millimeters ka precipitation tha, agle 24 आवर्स में भी 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड है। यानी कि अम्ब्रेला को आज इमोशनल सपोर्ट के लिए घर में ही छोड़कर जाया जा सकता है। एंड रिमेम्बर, फील्स लाइक टेम्परेचर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, तो बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनकर जाना जरूरी है। साथ में अपना वाटर कैरी करो, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड वेयर योर एसपीएफ 50++++, बिकॉज सन प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और उस सन से अब इस सन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सन बोले तो तुम्हारे मम्मी पापा का सन, यानी कि तुम्हारा भाई, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा करता है रक्षाबंधन पर, और रक्षाबंधन इज राइट अराउंड द कॉर्नर। और इसलिए कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर, जिसका नाम है नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, जिसमें तुम जीत सकते हो नानक फूड्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। बस करना तुम्हें यह है कि व्हाट्सएप करना है राखी RAKHI और उसे भेज देना है 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244 पर, एंड अपना पूरा नाम साथ में कर भेजना। या फिर तुम मुझे DM भी कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन Instagram। यहाँ पर राखी के साथ साथ अपना पूरा नाम और फोन नंबर भी लिखकर भेजना। कॉन्टेस्ट इज इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओकट्री रोड, जहाँ पर फेस्टिवल स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। ऑनलाइन विजिट करने के लिए वीरानीज्वेलर्स.com पर जाकर विजिट करो और ये अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स बिल्कुल मिस मत करो। और अभी मिस मत करना, मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले हैं। ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने का टाइम आ चुका है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने मेन में एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान कनाडा को स्टेट कह दिया, फिर इमीडिएटली खुद को करेक्ट भी किया और करेक्ट करते हुए कहा सॉरी फ्रूडियन स्लिप, एंड फिर ऐड किया दैट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। नाउ इट वाज अ प्लान्ड जॉइंट एम्फिबियस लैंडिंग एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड साउथ कोरिया हैज बीन कैंसल्ड विद सोल्स मरीन कोर साइटिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन यूएस फोर्सेस लिंक्ड टू द ईरान war. The allies are reportedly discussing whether the drills can resume. And lastly, Bloomberg reports Apple is planning a new Mac Mini, potentially ahead of its September event. The company has reportedly tested versions with M5 and M6 chips, though it's not clear which one will make the final cut. Mac Mini is releasing after almost 2 years. And मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस वॉज मिर्ची आवर का 3। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: Mirci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान।
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
2: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
1: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
2: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें। आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई। मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी? पोस्टमार्टम, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया। स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हो, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो। एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ।
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार। मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका। केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे। वो बाप बनने वाले
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है? कौन है?
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: मेरी बात सुनिए।
2: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं। आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है। आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है। अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this one straight out of प्यार गाड़ी and India. इंडिया के एमपी के ग्वालियर में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक वुमन ने अपने बॉयफ्रेंड की कार को अराउंड 3400 लिपस्टिक के स्मैक से कवर कर दिया. अब नॉर्मली इतने सारे केसेस रोमांटिक लग सकते हैं लेकिन इंडियन पुलिस की नजरों में ये रोमांस नहीं बल्कि रोड सेफ्टी का वायलेशन था. अपेरेंटली वीडियो में बॉयफ्रेंड कार ड्राइव करते हुए डेंजरस स्टंट्स करते हुए दिखाई दे रहा है और पुलिस ने उसे बुलाया, काउंसलिंग की उसकी एंड देन इशू किया एक 5500 रुपीज का चालान. और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि पुलिस के अकॉर्डिंग बॉयफ्रेंड ने अपनी मिस्टेक रियलाइज भी की है और पर्सनली कार से सारे लिपस्टिक मार्क्स भी हटा दिए हैं. मतलब कि इंडिया में रिलेशनशिप स्टेटस इज कॉम्प्लिकेटेड फॉरएवर. सो लेसन ऑफ द डे है, प्यार करो, पीडीए करो, लिपस्टिक भी लगाओ, लेकिन ये सब इंडिया में नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कार के ऊपर, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी फर्स्ट, रोमांस लेटर है. And speaking of something romantic, diamonds से romantic क्या हो सकता है? Tanishq presents Festival of Diamonds, जो कि फिलहाल चल रहा है, जहां पर तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा है डायमंड की वैल्यू पर और मेकिंग चार्जेस पर. साथ साथ में पता है पुराना गोल्ड अगर वहां पर लेकर जाओगे जो कि 18 कैरेट से अबव है तो वो एक्सचेंज कराने पर तुम्हें 0% डिडक्शन भी मिलने वाला है. अमेजिंग ऑफर है, फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है और अभी किसिस तो नहीं लेकिन मैं तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स प्ले कर सकती हूँ राइट हियर राइट नाउ और मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and it's time for your Mirchi Mornings birthday club announcement. Yay! आज के birthday babies जरा attendance तो लगाओ यार, because आज तुम्हारा birthday squad काफी star studded है. Celebrating their birthdays today just like you are Blake Lively, the Gossip Girl star, filmmaker Tim Burton, the man behind Beetlejuice, rock legend Elvis Costello. एंड कंट्री सिंगर बिली रे साइरस, जो कि माइली साइरस के पापा जी है. किस फ्रंटमैन जीन सिमंस एंड एक्ट्रेस रेचल बिल्सन. और एक्टर्स के बर्थडे गैंग में और भी लोग शामिल हैं. क्लॉडिया शिफर, हु इज अ सुपर मॉडल एक्स्ट्राऑर्डिनेयर. अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, नोन फॉर ट्रू ब्लड एंड बिग लिटिल लाइज. एंड एक्टर ब्लेयर अंडरवुड. एंड वी ऑल्सो रिमेम्बर द ट्रू स्क्रीन लेजेंड टुडे, शॉन कॉनरी, द लेजेंडरी जेम्स बॉन्ड, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हुई मार्क टुडे. एंड अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, रिमेम्बर यार, केक की कैलोरीज तो आज काउंट करती नहीं है, बर्थडे है बॉस. साइंस भी यार छुट्टी पर चला जाता है, तो धूम मचाओ बर्थडे पर, खाओ पियो ऐश करो. और अपने शाउट आउट्स मुझे भेज सकते हो तुम राइट नाउ, अपने लिए, किसी फ्रेंड के लिए. एंड व्हाइल यू डू दैट, लेट मी रिमाइंड यू, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट है, जहां पर तुम फैबुलस गिफ्ट हैम्पर्स जीत सकते हो कर्सी नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. यम. सिंपल सा काम करना है, राखी टाइप करके व्हाट्सएप करना है 9033647244 पर राइट नाउ, along with your full name, and register karo and then wait for my call. And you can also DM me. Mirchi Pris is my handle name on Instagram, that is MIRCHIPRIS. And this contest is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, with festive special offers going on there, 22 carat gold and diamond jewelry par. Online visit karna hai to viranijewelers.com is the site. Main hoon Prasala tumhare saath mein, wishing all the birthday stars a very very happy birthday. And aane wale hai marchidar bangers just for you. Stay tuned and stay hot.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. Aur ab sunne wale ho gold car latest rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 per troy ounce gold ki price trade kar rahe hain. Silver also trending higher at $65. $65 per troy ounce aaj silver trade kar rahi hai. हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्रायंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्रायंस ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली पुष्य नक्षत्र इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com पे जहां पे 0% इंटरेस्ट पे जीरो फाइनेंसिंग जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं rajjewels.com की टीम को। कैसे आइए लाइफ के प्रेशियस पल्स सेलिब्रेट करें एट rajjewels.com। थैंक यू
1: एंड देयर यू हैव इट लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन Mirchi Mornings विद मी Priscilla। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है Mirchi Pris एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची आवर का 3। यहाँ पर तुम्हें खबरें मिलती हैं अराउंड द वर्ल्ड से। सबसे पहले, द यूएस हैज सैंक्शनड 4 इंडियन कंपनीज ओवर अलेज्ड इंपोर्ट्स ऑफ इरानियन ओरिजिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। द कंपनीज नेम्ड आर पोर्टीज पार्टनर्स सदाशिवा ओवरसीज, पीपी सॉफ्टटेक एंड प्राकृतिज इंफ्रा इम्पेक्स। द ब्रॉडर गोल हियर इज रिस्ट्रिक्टिंग पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्सेज फॉर ईरान। नंबर 2 पर, यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान कुड क्रिएट चैलेंजेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग बासमती राइस, टी एंड फार्मास्यूटिकल। India shipped around $383 million worth of rice to Iran in the first half of 2026, while tea exports were around $14 million. Sanctions could make payments, shipping and financial channels more complicated for Indian exporters. And lastly, New Zealand ke Prime Minister Christopher Luxon says the government will introduce a bill to restrict social media access for children under 16. Platforms could be required to verify ages and companies that don't comply could face major fines. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Aane wale hai Mirchi Dar bangers. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो, ये कमलेश जी?
2: हाँ जी, कौन?
3: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
2: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
3: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का खिलाफ, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
2: देखिए,
3: मैंने हमेशा कब लिए आपसे? हमने कब लिए आपसे?
2: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
3: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
2: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चन्ना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
3: आप नहीं दे रहे फिर?
2: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
3: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
4: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
2: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
4: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
2: No, not an issue.
4: 750
2: only?
4: Yes, sir, absolutely.
3: 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम गिरेज में बढ़ गई।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's pagal.
5: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Rashi's Own Part 2. Main hoon Priscilla tumhare saath mein on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi's Own.
1: लीब्रा यानी टूला राशि, आज मूड हार्मोनियस और चेयरफुल रह सकता है। गुड न्यूज भी मिल सकती है आज के दिन, बस अपने प्राइवेट थॉट्स को पहले क्वाइटली सॉर्ट करो, फिर दुनिया को अपडेट देना। हर थॉट को इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। लकी कलर फॉर यू इज बेबी ब्लू, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और दूसरों के ड्रामे से दूर रहो। ग्रुप प्लान्स में मोमेंटम वापस आएगा, स्पेशली जब तुम्हारा मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो। ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करने का परफेक्ट टाइम है। प्रोफेशनल गोल्स तब इजियर होंगे जब तुम क्लियरली डिफाइन करोगे कि सक्सेस एक्चुअली कैसा दिखता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कम्युनिकेशन आज तुम्हारा सुपर पावर है। वर्क हो या रिलेशनशिप्स हो, लीडरशिप और करियर फोकस में फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है, सो स्टेप अप बॉस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इमोशंस थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं एज द मून जॉइंस प्लूटो इन योर साइन। डीप फीलिंग्स या हिडन ट्रूथ सर्फेस हो सकते हैं, रिएक्ट करने से पहले ब्रीद और गूगल पे अपने एक्स को सर्च मत करना, कपीश। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 31। पाइसीज यानी कि मीन राशि, लॉजिक और इमोशंस के बीच थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है आजकल। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो और कंप्लीटली क्लोज मत करो, लव डिजर्व्स अ डोर, बस सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। लकी कलर इज सी फोम ग्रीन, लकी नंबर इज 8। एंड दैट इज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड फॉर मोर मिर्ची मैडनेस फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Rashi's Own Part 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi's Own.
1: लिब्रा यानी टूला राशि, आज मूड हार्मोनियस और चेयरफुल रह सकता है। गुड न्यूज भी मिल सकती है आज के दिन, बस अपने प्राइवेट थॉट्स को पहले क्वाइटली सॉर्ट करो, फिर दुनिया को अपडेट देना। हर थॉट को इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। लकी कलर फॉर यू इज बेबी ब्लू, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और दूसरों के ड्रामे से दूर रहो। ग्रुप प्लान्स में मोमेंटम वापस आएगा, स्पेशली जब तुम्हारा मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो। ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करने का परफेक्ट टाइम है। प्रोफेशनल गोल्स तब इजियर होंगे जब तुम क्लियरली डिफाइन करोगे कि सक्सेस एक्चुअली कैसा दिखता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कम्युनिकेशन आज तुम्हारा सुपर पावर है। वर्क हो या रिलेशनशिप्स हो, लीडरशिप और करियर फोकस में फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है, सो स्टेप अप बॉस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इमोशंस थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं एज द मून जॉइंस प्लूटो इन योर साइन। डीप फीलिंग्स या हिडन ट्रूथ सर्फेस हो सकते हैं। रिएक्ट करने से पहले ब्रीद और गूगल पे अपने एक्स को सर्च मत करना, कपीश। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 31। पाइसीज यानी कि मीन राशि, लॉजिक और इमोशंस के बीच थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है आजकल। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो और कम्प्लीटली क्लोज मत करो। लव डिजर्व्स अ डोर, बस सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। लकी कलर इज सी फोम ग्रीन, लकी नंबर इज 8। एंड दैट इज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड फॉर मोर मिर्ची मैडनेस फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: कर दे दिल की फीलिंग्स पर,
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, Mirchi Mornings has come to an end. मेरा नाम है Priscilla and before I let you go back to your morning madness, एक story जो genuinely मुझे smile देकर गई है, वो बताती हूँ तुम्हें. China में World Humanoid Robot Games में ex-humanoid का Tien Kung Omni नाम का robot 400 meter race जीत गया. लेकिन एक फनी पार्ट भी है इसमें. इसको शाय रोबोट बोला जा रहा है बिकॉज रेस के दौरान ये अपने आर्म्स ऊपर करके लिटरली फेस को कवर कर रहा था और मेकर्स के अकॉर्डिंग रोबोट ने खुद सीखा कि इस पोस्चर में रनिंग उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है. मतलब कि हम ह्यूमंस आई नीड टू वर्क ऑन माय कॉन्फिडेंस तो बोलते हैं और रोबोट्स जो है वो हमें कॉपी करते करते थोड़ा कंफर्टेबल रनिंग के लिए कर रहे हैं. ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट, कल को रोबोट हमसे बोलेगा सॉरी यार कैमरा ऑन नहीं कर सकता बिकॉज मुझे सोशल एंग्जाइटी है. और जाते जाते मेरी तरफ से एक और रिमाइंडर, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो एंड विन करो गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. रजिस्टर करो बहुत ही इजिली, व्हाट्सएप पर राखी टाइप करके भेजो एंड सेंड इट विद योर फुल नेम टू 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. ऑनलाइन विजिट करने के लिए veeraniejewelers.com इज द साइट. एंड अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी ऑन मिर्ची Mornings. मेरा नाम है Priscilla. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और क्योंकि मैं एक आरजे हूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब लोग मुझसे एक्चुअली में आकर के कहते हैं कि बस कर श्रेया, और ज्यादा बातें नहीं। अच्छा, जब आप किसी एक करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट होते हो ना, तो जनरली आप उसी करियर के लिए ट्राई करते हो। लेकिन हमारे एक बॉलीवुड स्टार ऐसे थे जिनके करियर की शुरुआत ऑडिशन से तो हुई, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बल्कि माइक के आगे। ये जो लेजेंडरी स्टार थे ना, इनका ड्रीम था कैमरे के आगे आना, लेकिन उससे पहले ये माइक के आगे आए। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी। कुछ गानों के उस पार, कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: जयदीप।
3: हाँ जी।
4: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
3: हाँ जी।
4: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
3: मतलब
4: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं,
3: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
4: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं,
3: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेगा?
4: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
3: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
4: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
3: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
4: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
3: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
4: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
3: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
4: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही।
3: तू कहाँ पे है? तू
4: बैंक में।
3: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
4: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
3: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
4: खोलूंगा ना, खुली नहीं रहा, क्या करूँ आप?
3: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
4: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's
5: पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट, हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाई, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनका करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ, भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वापस अब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
4: Har gana hit, har dusra gana super hit.
5: Only on Radio Mirchi. It's hot.
6: Ah, ah,
0: ah, ah. Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया, और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ। नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए, और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गई। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में 13 years में आप कौन सी क्लास में होते हो? आई थिंक 6th या 7th। और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में है ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान। कौन सी हीरोइन थी ये? आहा, इतनी आसानी से नहीं। गाने सुन करके वापस आओ, फिर बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी जो कि तब सिर्फ 13 ईयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, ये कमलेश जी?
3: हाँ जी, कौन?
4: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
4: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए,
4: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? नहीं, हमने कब लिया आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
4: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
4: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
4: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
5: I want to talk to you. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: yes,
5: with us?
3: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
4: हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम गेज में बढ़ गई।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी हिंदी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कम्प्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इसी बात पे रेखा जी का एक गाना हो जाए फ्रॉम द फिल्म उमराव जान, सुन करके यही वापस

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.
5: Hit

Union, Radio Mercy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई थी विलेन के घर पे, यानी अमजद खान जी के घर पे, और उन्होंने एक बिस्किट का ऐड किया जिसकी टैगलाइन पता क्या थी, अगर ये बिस्किट खाओगे तो गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। इंटरेस्टिंग है ना, ना जय की तरह ना वीरू की तरह, लेकिन गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। ऐसी ढेर सारे किस्से कहानियां हैं उस जमाने के, तुम्हारे साथ शेयर करती जाऊंगी। कहीं भी मत जाना, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जा करके घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था। तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. La viva la burca.
1: Energy, burca. Hello.
2: Hello. Anshika? ये अंशिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
2: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं।
2: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
2: डू? दुकान मैडम, कपड़े की अपनी दुकान। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
4: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
5: डन
4: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
5: डन।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वॉज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म ही वॉज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पुरानी जीन्स पे या श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन सारे हार्टलेस दिलबरों के लिए है जो अपने प्यार करने वाले को ना बहुत तड़पाते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि वो उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें मजा आता है उनको छेड़ने में, उनको तरसाने में, उनको थोड़ा तड़पाने में। ये गाना आज उन्हीं के लिए। श्रेया जाती है, कल मिलने फिर से आती है। इन केस यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, डीएम कर देना। बाय बाय।

0: दोस्त कुछ शो सिर्फ देखे नहीं जाते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ना चाहते हुए भी आप उनके डायलॉग्स याद रख जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स घर के नाम बन जाते हैं और उनका स्वैग पॉप कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। वेल, मिर्जापुर इज वन सच सीरीज फॉर यू और अब वही भौकाल ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर आने वाला है, मिर्जापुर द मूवी के फॉर्म में। एंड टॉकिंग अबाउट द सीरीज, ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहां दोस्ती से ज्यादा पावरफुल थी दुश्मनी और प्यार से ज्यादा डेंजरस था पावर का ऑब्सेशन। कालीन भैया का काम एंड कैलकुलेटेड स्वैग, गुड्डू पंडित का रिवेंज मोड और मुन्ना भैया की अनप्रेडिक्टेबल मैडनेस सबने मिलकर मिर्जापुर को कल्ट बना दिया। और अब जब 3 सीजन के बाद इस सीरीज का मूवी वर्जन आ रहा है तो भाई हर दूसरे फैन के अंदर एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर है। और अगर आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े एंड आपसे बोले कि भाई ये लड़की मिर्जापुर की बातें क्यों कर रही है इतनी सारी, देन बाबू मोशाए आज मेरे शो पे होने वाले हैं मिर्ची गिरफ्तार, नन अदर देन द स्टार कास्ट ऑफ मिर्जापुर द मूवी। वेल, उसके अलावा भी बहुत कुछ फिल्मी होने वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, क्योंकि आपको पता है मैं हूँ आपके साथ आपकी लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति। So stay tuned, it's hot.

0: Mirci. Iskaba na puskaba na sakaba na. Burga, burga, burga. Na vidva la burga. Mirci burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Jadip.
1: हाँ जी
2: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
1: हाँ जी
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ
2: तो नहीं है आपको. मैं यही कह रहा हूँ तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के.
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेगा.
2: यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
2: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
2: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा.
2: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि ला सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
1: तो कहाँ पे है तू?
2: बैंक में.
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर, अपना हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने.
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
2: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँगा अब.
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो
2: ठीक है. मैं वापस कर रहा हूँ ठीक है. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मैंने तो जानबूझ के इस फिल्म की टिकट कराई है। आफ्टर ऑल पता तो चले कि भाई ये फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स कैसी सी है, क्योंकि अभी तक टीजर और ट्रेलर में तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई है। फिल्म मैं बात कर रही हूँ यश स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक, जिसकी एडवांस बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एंड भाई 6 घंटे में इस फिल्म ने 30,000 से भी ज्यादा टिकट्स बेच दी है। इसी के साथ हिंदी ओपनिंग ट्रैकिंग इसकी ₹45.55 करोड़ चल रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इट विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट एडवांस ऑफ 2026 आफ्टर धुरंधर 2। इमरान हाशमी की अपकमिंग गन मास्टर G9 का टीजर, यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक जिसके बारे में अभी मैं इतनी बातें कर रही थी, उसी के साथ अटैच किया जाएगा, दस गिविंग इट एन अर्ली थिएट्रिकल बूस्ट। बाय द वे, इमरान की इस फिल्म को आने में अभी टाइम है, नवंबर रिलीज है भाई इसका। गांधारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तापसी पन्नू स्टारर अपकमिंग एक्शन थ्रिलर की बात कर रही हूँ, जिसको लिखा और प्रोड्यूस किया है कनिका ढिल्लो ने, डायरेक्ट किया है देवशीष मखीजा ने, एंड इसकी सेटिंग इज एक माँ की कहानी जो डेटरमाइंड है अपनी बेटी को ढूंढने में, और इस बीच उसको जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इज व्हाट द मूवी इज गोना शो। माइंड यू, इसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगा, इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम द 3rd of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको इस गेम को खेलने के लिए पहले मेरे इंस्टाग्राम पे जाके DMs में अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इन सवालों के सिलसिले की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी। कैसे है सर?
3: बढ़िया, नमस्कार जी।
0: तो सर एक बार फिर से आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाया जाए। तो मेरा पहला सवाल है, अनिल कपूर की फिल्म जिसमें वो घड़ी पहन के गायब हो जाते हैं,
3: मिस्टर इंडिया,
0: मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो कौन है?
3: अमरीश पुरी।
0: अमरीश पुरी की फिल्म जिसमें उनके पास टॉमी नाम का एक पग होता है,
3: टॉमी नाम का पग, ये मुझसे शादी करोगी।
0: बहुत बढ़िया, मुझसे शादी करोगी में विकेट सनी कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो करोड़ों की बंदूकें भंगार में बेच देते हैं,
3: ये फिर हेरा फेरी।
0: फिर हेरा फेरी में गोरिल्ला से केला छीन के कौन खाता है?
3: जॉनी लिवर।
0: जॉनी लिवर का कैरेक्टर किस फिल्म में भूला भूलते हैं?
3: तो गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में गोपाल कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें लंगड़ा त्यागी उनके गैंग मेंबर होते हैं?
3: ओमकारा।
0: ओमकारा में लंगड़ा त्यागी कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान की फिल्म जिसमें परी होती है?
3: परी होती है मतलब परिणीति चोपड़ा?
0: नहीं नहीं, परी परी लेजिट परी।
3: नहीं पता।
0: चलिए कोई बात नहीं, उसका जवाब तो आगे वाले प्लेयर हमें दे देंगे, बट अभी मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय, अगर आपके अंदर का फिल्मची भी थोड़ा फोमो में जा रहा है, देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर DM कीजिए एंड वी विल कनेक्ट टुगेदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून हूँ आप, आने से पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, जहाँ आपको मैं अपने इंस्टा पे जाके मेरे डीएम्स में अपना नंबर भेजने की बात कहती हूँ ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमने आरुल के साथ शुरू किया, बट अब रूहान आगे का गेम कंटिन्यू करेंगे। तो तैयार है रूहान? ऑल राइट, सो माई क्वेश्चन इज की दीपिका पादुकोण किस फिल्म में अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नजर आई हैं?
3: बाजीराव मस्तानी।
0: यस, पहला इंसान जिसने एकदम एक बार में ही गेस कर लिया। बाजीराव मस्तानी में किससे उसका गुरूर छीन लिया जाता है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: सब पता है लड़के को। प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में सुपर हीरो की वाइफ बनी है?
3: क्रिश 3।
0: क्या बात, क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन कौन सी फिल्म में मुगल राजा बने हैं?
3: जोधा अकबर।
0: सब पता है भाई, जोधा अकबर में अकबर की राजपूत वाइफ कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में शायरा बनी है?
3: ए दिल है मुश्किल।
0: ए दिल है मुश्किल में अपनी दोस्त से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने किस फिल्म में अपना टावल गिराया है?
3: सावरिया।
0: सावरिया में उनकी हीरोइन कौन है?
3: आई गेस इट्स सोनम कपूर।
0: यस इट इज। सोनम कपूर की किस फिल्म में कबूतर का नाम मसक कर लिया?
3: दिल्ली 6 मैंने देख रखी है।
0: क्या बात, दिल्ली 6 के मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें उनका सरनेम आता है?
3: बोल बच्चन।
0: बोल बच्चन में झूठ किसको पसंद नहीं?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में 2 अक्टूबर को पंजिम जाते हैं?
3: दृश्यम ऑफ कोर्स।
0: दृश्यम में लेडी पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: तब्बू।
0: तब्बू की फिल्म जिसमें वो अपने पति को मार देती है?
3: अंधाधुन।
0: अंधाधुन में अंधे होने की एक्टिंग कौन करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना किस फिल्म में फोन पे लड़की बन के बात करते हैं?
3: ड्रीम गर्ल।
0: ड्रीम गर्ल आपकी कौन है?
3: नो वन, आई एम
0: नेवर माइंड, बट सिंगल होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको ये टैग नहीं दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: Well, I'm sure ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी एकदम से जाग जाता होगा, तो उसको जगा के ही रखना क्योंकि हर रोज इस गेम का सिलसिला मेरे शो पे जारी रहता है। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर मुझे डीएम करो, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vinva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो, ये कमलेश जी?
2: हाँ जी, कौन?
3: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
2: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
3: नहीं देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
2: देखिए,
3: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
2: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
3: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
2: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई कहानी है, कोई फसल है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
3: आप नहीं दे रहे फिर?
2: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
3: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
4: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
2: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
4: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
2: No, not an issue. 750 only?
4: Yes, sir, absolutely.
3: Na, 750 na, bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yeah, paja.
0: Breaking news. Mirchi par aane wala hai hit gana.
5: Hit. गाना

0: रियलिटी कम फैंटेसी ज्यादा लगती है ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली मूवीज की बात कर रही हूँ, जो जनरली फैंटेसी का अप्रोच लेकर ही आती है, भले ही वो मेरे और आपके जैसे लोगों की कहानी दिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें प्यार इश्क मोहब्बत को लेकर काफी अनरियलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। ग्रैंड जेस्चर्स दिखाए जाते हैं जबकि रियल कमिटमेंट की बातें नहीं होती, और ऐसे क्रूशियल डिटेल्स को अक्सर हमारी ये फिल्में इग्नोर कर जाती हैं। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ कंपैरिजन ऑफ फिल्में कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले DDLJ वर्सेस बैंड बाजा बारात की बात हुई। अब नंबर दो पे दिल धड़कने दो वर्सेस जानी तू या जानी ना की बात करना चाहूंगी। दिल धड़कने दो में कबीर जैसे ही फारा को देखता है, रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा को देखते हैं स्विमिंग पूल के पास, तो एक अलग सा कनेक्शन दिखा दिया जाता है और इमीडिएटली उनकी जो किस्मत है वो दोनों के बीच में एक ड्रामेटिक फ्लो ऑफ रोमांस लेकर आती है और स्लो मोशन के जरिए सारी चीजें एकदम मस्त सी हो जाती है ना। वहीं दूसरी तरफ जाने तू या जाने ना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी और उनका जो ये कोर्टशिप है, जो रिलेशन है, इट इज कॉन्स्टेंट। हाँ, वो कभी बोरिंग हो जाती है, कभी लड़ाई होती है इनके बीच में, बट दैट्स व्हाट अ रियल टाइम रिलेशनशिप लुक्स लाइक, राइट? चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट कबीर सिंह वर्सेस बर्फी। सो कबीर सिंह में जिस तरीके से इमोशनल सपोर्ट और प्यार को अग्रेसिव रूप दे दिया गया है, कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेसिव रूप दे दिया गया है, दैट वाज रियली वहीं दूसरी तरफ असली पैशन तो बर्फी में दिखाया गया है, वो भी सिंपल कॉन्स्टेंट एक्ट्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ। मतलब बताओ, कोई आपके लिए खाना लेकर आए, आपकी डेली की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बिना बोले सॉल्व करता जाए। Well, मेरी इस लिस्ट में अभी और कुछ ऐसी ही फिल्मों की चर्चा बाकी है, but all of that in a while. Till then, you stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: Relationships are not just about happily ever afters.
1: Shruti. मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: बट कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अक्सर यही रूप दिखाना चाहती है एक रिलेशनशिप का. हेलो जी, हाय बाबू मोशाय. आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे फिल्मों की कंपैरिजन कर रही हूँ जिसमें एक तरफ कुछ अनरियलिस्टिक अप्रोचेस ऑफ रोमांस दिखाए गए मूवीज के जरिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्मों ने बहुत ही रियल टाइम प्यार का इजहार दिखाया है. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट ए दिल है मुश्किल वर्सेस तमाशा, जहां एक तरफ ए दिल है मुश्किल में आर्ग्यूमेंट्स को ड्रामेटिक और एस्थेटिक रूप दिया गया है, कॉन्फ्लिक्ट का फोकस पैशन पेन और ड्रामेटिक एग्जिट लाइंस हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म तमाशा में दोनों ही एक्टर्स के रिलेशनशिप की आर्ग्यूमेंट, उनके बोर्डम, उनके आइडेंटिटी क्राइसिस, उनके करियर की अनसर्टेनिटी, इन सारी चीजों को लेकर होती है जो काफी मेसी होती है, अगली होती है एंड डील्स विद द एक्चुअल रूट्स ऑफ देयर इनकंपैटिबिलिटी. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट साथिया वर्सेस वेक अप सिड, जहां एक तरफ साथिया में काफी स्पॉन्टेनियस प्यार दिखाया गया है कि भाई बंदा और बंदी एकदम से मूव इन कर जाते हैं, एक परफेक्ट डोमेस्टिक ब्लिस में जीते हैं, अवॉइडिंग एवरी एंड एनी लॉजिस्टिकल स्ट्रगल, वहीं दूसरी तरफ वेक अप सिड में काफी रियल टाइम चीजें हैं, जहां एक तरफ सिड के लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आयशा के मैच्योरिटी को बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है. ऑल इन ऑल इन दोनों का रिलेशनशिप इंक्लूड्स मंडेन रियलिटीज लाइक बिल शेयर करना, साफ सफाई करना, और इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक ही घर में साथ ग्रो करना. तो बाबू मोशाए, अब समझ में आया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमें प्यार इश्क मोहब्बत को इतना फैंटेसाइज करने पे क्यों मजबूर करती है. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड. इट्स ऑल.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मैंने तो जानबूझ के इस फिल्म की टिकट कराई है। आफ्टर ऑल पता तो चले कि भाई ये फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स कैसी सी है, क्योंकि अभी तक टीजर और ट्रेलर में तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई है। फिल्म मैं बात कर रही हूँ यश स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक, जिसकी एडवांस बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भाई 6 घंटे में इस फिल्म ने 30,000 से भी ज्यादा टिकट्स बेच दी है। इसी के साथ हिंदी ओपनिंग ट्रैकिंग इसकी ₹45.55 करोड़ चल रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इट विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट एडवांस ऑफ 2026 आफ्टर धुरंधर 2। इमरान हाशमी की अपकमिंग गन मास्टर G9 का टीजर, यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक, जिसके

अंधारे का काम डाउन शुरू हो चुका है. ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तापसी पन्नू स्टारर अपकमिंग एक्शन थ्रिलर की बात कर रही हूँ, जिसको लिखा और प्रोड्यूस किया है कनिका ढिल्लो ने, डायरेक्ट किया है देवाशीष मखीजा ने, एंड इसकी सेटिंग इज एक माँ की कहानी जो डेटरमाइंड है अपनी बेटी को ढूंढने में, और इस बीच उसको जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इज व्हाट द मूवी इज गोना शो. माइंड यू, इसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगा, इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम द 3rd of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन. अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे

दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं, बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na pierdva la murga.
1: Mirci, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: ये जयदीप
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको काम क्यों नहीं करेंगे
3: क्या यूज करूं आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है
2: अरे आप बढ़िया क्वालिटी के दिए 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना काम नहीं हो रहा
2: आप सही से काम करके देखिए ना काम नहीं करेगा
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ कोई आना जाए बस ये तो है भी बड़ा रिस्की ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ ये टॉर्च चला ली ठीक है ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा पहले ही पकड़ा जाऊंगा चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ पांच खोल के देख ली मैंने पूरे बैंक में पांच लॉकर है एक नहीं खुल रहा कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो आप जो कहोगे हो जाएगा काम कर लिए काम जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे से खोली नहीं रही
2: तू कहाँ पे है तू
3: बैंक में
2: अबे तू पागल है क्या बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये
3: खोलूंगा ना खुल ही नहीं रहा क्या करूँ आप
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर तू फोन रख भाई मेरे पास कॉल मत करियो
3: ठीक है मैं थोड़ा वापस कर रहा हूँ ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और राखी का सीजन जोरों शोरों से चल रहा है और इस बार सेलिब्रेशंस के साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। क्योंकि इस रक्षाबंधन सिर्फ रिश्तों की मिठास ही नहीं, एक्साइटिंग प्राइजेस और अमेजिंग हैम्पर जीतने का मौका भी आपका इंतजार कर रहे हैं, थैंक्स टू नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। तो पार्टिसिपेट करना तो बहुत ही आसान है, आपको टाइप करना है राखी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है 9033647244 9033647244, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर भी डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi, SIDDHI। सिर्फ एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने की रेस में शामिल। और जी हाँ, राखी की शॉपिंग का प्लान हो रहा है तो विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी जरूर विजिट कीजिए। वहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। डिटेल्स के लिए जरूर जाइए viranijewelers.com पर। तो इस राखी मिठास भी, शॉपिंग भी और एक्साइटिंग प्राइजेस भी, क्योंकि इस बार नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। आज ही रजिस्टर कीजिए। और अब इस फेस्टिव वाइब को म्यूजिक के साथ और भी खास बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ना स्ट्रेंजर्स भी फैमिली जैसे लगने लगते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे हॉस्पिटल का वेटिंग रूम हो या वो स्ट्रेसफुल मोमेंट जब किसी अपने के रिपोर्ट्स का वेट हो, उस वक्त एक काम वॉइस, एक केयरिंग नर्स या फिर एक हेल्पफुल टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए हेल्थ केयर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं लगता, एक रीअश्योरेंस लगता है। और अगर आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ आप भी किसी के हेल्प का रीज़न, किसी के राहत का रीज़न बन सकते हो, तो आज ही कॉल कीजिए एम्स एजुकेशन को, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, एट 9082220002, 9082220002, या फिर आप विजिट कर सकते हो aimseducation.edu और डिस्कवर कीजिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अज बोतला खुल

रामायणा का ट्रेलर तो रिलीज हुआ और उसे देखते हुए ना एक थॉट जरूर आया। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, हमारे एपिक्स में ना राजा और रानियों की दुनिया कितनी ग्रैंड इमेजिन हुई है। मतलब वो महल, कॉस्ट्यूम्स, रॉयल दरबार और स्पेशली उनकी ज्वेलरी, क्राउन से लेकर नेकलेसेस, इयररिंग्स और वो इंटीग्रेट डिटेलिंग तक, स्क्रीन पर वो रॉयल लुक देखो ना तो नज़र नेचुरली वही चली जाती है। और तब रियलाइज होता है कि ज्वेलरी हमारी स्टोरीज में सिर्फ सजने के लिए नहीं थी, सदियों से ग्रैंडियर और रॉयल एलिगेंस का एक हिस्सा थी। और अब वैसे महल और दरबार भले ही आज की दुनिया में ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा रॉयल एलिगेंस अपने लुक में लाना आज भी पॉसिबल है। और इसी रॉयल मूड में तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउ 18 कैरेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अपने रियल लाइफ रॉयल मोमेंट्स में तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ थोड़ी सी ग्रैंडियोस जरूर ऐड कीजिए। आज ही विजिट

0: कीजिए तरिक स्टोर एट 1429 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों एपिक की दुनिया के राजा और महारानियों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा है जरूर बताना DM me on Instagram RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सिनेमेटिक ग्रैंडियर को कंटिन्यू करते हुए ये अगला गाना ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची।
1: हेलो
2: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए,
3: नाम क्या है?
2: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं।
2: तो अभी मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
2: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू, आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट।

दोस्तों, कभी सोचा है हमारे लाइफ में नोटिफिकेशंस कितनी सारी होती है? शाम शाम लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और दिन भर की नोटिफिकेशन, जैसे कि योर ऑर्डर हैज बिन डिलीवर्ड, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स। यार, रोज इतनी नोटिफिकेशंस आती है कि कभी कभी दिल करता है कि एक नोटिफिकेशन ऐसी भी आए जैसे कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ विनर। वैसे वो नोटिफिकेशन शायद इतनी दूर भी नहीं, बिकॉज इस रक्षाबंधन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स। यानी इस रक्षाबंधन एक्साइटिंग प्राइजेस और अमेजिंग हैम्पर्स जीतने का मौका आपका इंतजार कर रहा है, थैंक्स टू नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ एंड वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी, जहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑन 24 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानी ज्वेलर्स.com फॉर मोर डिटेल्स। तो आपको करना है बस आसान सा काम, टाइप करना है राखी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 9033647244 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और हो सकता है अगली नोटिफिकेशन आपके चेहरे पे स्माइल आए, क्योंकि शायद वो कहे कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर। तो आज ही पार्टिसिपेट कीजिए इन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स। अब देखते हैं ये जो अगला गाना है वो आपके चेहरे पे कितनी स्माइल लाती है। तो सुनते रहिए मिर्ची, it's hot. Din ko ra-

अब पढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात कोर्सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम
2: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टैमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है, और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी, और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मज़ेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो, ये कमलेश जी?
2: हाँ जी, कौन?
3: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
2: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
3: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
2: देखिए,
3: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
2: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
3: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
2: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
3: आप नहीं दे रहे फिर?
2: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
3: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
4: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
2: yes,
4: with us?
2: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
4: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
2: No, not an issue. 750 only?
4: Yes, sir, absolutely.
3: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aayi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yeah, bugger.

वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत को भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी एमी विर्क का किस्मत ये गाना सुनती हूँ ना, एक पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार, वो इंतजार और वो थोड़ी सी कसक, और एमी विर्क की वो आवाज़ जो इमोशन को सीधा दिल तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार एमी विर्क की कहानी सिर्फ स्क्रीन या प्लेलिस्ट तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि शुक्रवार अगस्त 28 को एमी विर्क अपने यूनिटी टूर के साथ न्यू जर्सी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर इन कार्टरेट न्यू जर्सी, इट्स गोइंग टू बी एन अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो इवेंट का कैनवस बहुत ही ग्रैंड रहने वाला है, तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम sulekha.com या फिर saiusainc.com। और अब बारी आती है आपकी किस्मत की, क्योंकि मिर्ची लिसनर्स के पास कॉन्सर्ट की टिकट्स जीतने का मौका है। तो मुझे बताइए कि अगर एमी विर्क के कॉन्सर्ट में आपकी किस्मत खुल जाए तो वो कौन सा गाना होगा जो आप सबसे पहले लाइव सुनना चाहोगे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, टाइप कीजिए एमी विर्क और अपना जवाब, और कॉन्टेस्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला डीएम मेरा हो और मैं कहूं कि बॉस किस्मत में एमी विर्क लाइव शो लिखा है। तो चलिए, अब किस्मत की बात हो ही रही है तो अगला गाना भी वही है, एमी विर्क का किस्मत। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.
4: Hit gana.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज़ में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नज़र के शौक को ना पोइट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डेलिबरेटली बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो ओम को शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हां, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ही डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था, और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो ये है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी, और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि ये गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और 6-पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है, और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक आर आईज ऑफ। वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द, यानी दर्द दे डिस्को, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज़्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत मेलेडी। और मजे की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा। और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wiet bala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yeah, Jadeep.
1: हाँ जी
2: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
1: हाँ जी
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
2: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे.
2: यूज करो, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
2: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
2: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी. अच्छा, तो खुलेगा.
2: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
1: तो कहाँ पे है तू?
2: बैंक में.
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
2: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप.
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
2: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर। जी हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे, और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेपी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे, जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवानगी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

एक ही आर्टिस्ट पहले आपको इमोशनल भी कर दे और अगले ही गाने में आपसे डांस भी करवा दे, यार ये तो सिर्फ लाइव इन कॉन्सर्ट में ही हो सकता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और एमी विर की प्लेलिस्ट खोलो ना तो मूड का रिमोट उनके हाथ में चला ही जाता है। फिर चाहे किस्मत जैसा गाना हो जिसमें दिल वाले एमी मिलते हैं, या फिर वंग दा नाप हो जिसमें एनर्जी ही बदल जाती है, या फिर उनकी पंजाबी फोक वाली टेक्स्चर आए तो यार गाने में एकदम देसी रंग भर जाते हैं। और इसीलिए लाइव इन कॉन्सर्ट का मजा ही अलग होता है। एक ही शाम में रोमांस भी, इमोशन भी और फुल पंजाबी सेलिब्रेशन भी। तो दोस्तों ऐसी शाम आपके लिए आ रही है शुक्रवार को यानी अगस्त 28 को विद एमी वर्क यूनिटी टूर 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर में, कार्टरेट न्यू जर्सी में। और दोस्तों इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, मतलब इवेंट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम saiusainc.com या फिर sulekha.com। और अब बारी आती है मिर्ची लिसनर्स के उस स्पेशल कॉन्टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेस्ट बड़ा आसान सा है। आपको बताना है एमी विर्क का वो कौन सा गाना है जो आप उनसे लाइव सुनना चाहोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से एमी विर्क टाइप कीजिए और मुझे डीएम कीजिए @rjmirchisiddhi, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जवाब दे सकते हो @9033647244। जल्दी से जवाब भेजो और हो सकता है वो गाना इस फ्राइडे आप स्क्रीन पर नहीं सामने स्टेज पर सुन रहे हो। तो चलिए थोड़ा पंजाबी तड़का हो जाए एमी विर्क का राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

शाम शाम दा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।